धटक धटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

ऐसा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़।
1: हाय बेबी,
2: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
1: नहीं आ रहे मतलब?
2: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
1: आई लव यू।
2: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: David, मेरी फ्रेंड है।
1: हाथ धोए।
0: मीन्स बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
1: इट्स सिंपल। लव।
0: लव? आपने भी किया था लव?
1: था, किया है और हमेशा करता रहूंगा।

हजार बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

परवा छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही बनी रहेछौ है बोलु त के भनेर

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।